0: फौरन से आते मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी।
1: क्या बता दोगे?
0: मैंने मैंने मैंने तुझे तुझे तुझे किया किया किया

0: Morning, Mr. Johan.
1: Good morning. Rahul.
0: Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो. Hi guys.
0: आओ. Hi.
1: कैसी लग रही हूँ मैं?
2: Terima kasih, Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.